सागर पूरन परमेश्वर हर नाचे त्यो मन माही। अमृत कौड़ा बिखिया बीठी साकत की बिद नैनो डीठी। कूड़ कपट अहंकार री जाना नाम सुनत जन बिछू डसाना। ओ माया कारण सदही झूरे मन मुख कवै न उस्तत करे। निर्भव निरंकार दातार तिस स्यों प्रिय।

0: सत्कार जो सात संगत जो जिमें मैं सवेरे भी बेनती की सी हुण फिर करदा हां कि गरीबां दे सच्चे सुचे पखी हकीकत विच जिन्हां कह सकदे हां कि निमाणे दे माण हन, निताणे दे ताण हन, न्योटियां दी ओट हन, वे वसीलियां दे वसीले हन, बेपनाह दी पनाह हन। धन सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे प्रकाश दिहाड़े दियां आप सब नूं वधाईयां। इस लई खुशी दा प्रगटावा अजहार मुसरत शादमान ने। मैं अर्ज करदा हां कि सारी संगत बुलंद आवाज़ी नाल फतेह गजाओ जी, वाहिगुरु जी का
1: खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
0: कुछ मेरा तौखला दूर करन वास्ते एक बारी जेड़ी पिछे संगतां बैठियां ना ओ भी कृपा करो, पर अगलियां भी बोलो जी, वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह।
0: नींद लखियो सदर ला लो, ना जाड़ा मुड़ लहे के ना, ऐद लखियो सदर ला लो, खिड़े चमन विच नाला बहंदा, ना जाना मुड़ वहे के ना। नींद लखियो सदर ला लो, ना जाना मुड़ लहे के ना, इस जीवन दा की परवासा आउंदी रुते रहे के ना। इस लई एक बारी फिर का कृपा करो, उचारो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। ए शब्द जो आपते दास से गान लगे ने, मेरे बहुत ही परम प्यारे आदर योग सरदार हरजाप सिंह जी औजला जी ने सवेर से आके कहा कि तुहाडे पिता जी एक बंदिश है ते ओ जे सुना दियो तां बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं अज शाम नूं इंडिया जाना है ते मैं ए बिलावल दी ए धुन शब्द दी ए तुका अपने जहन विच वसा के जावांगा, तां मेरे वास्ते गुरु अंग संग वरतदा रहेगा। मैं कह जी बिलावल दियां ते कई बंदिशां सन पिता जी चाचा दियां, पर तुसी दस सकदे आ, और यकीन करो साध संग जी इन्हां ने उस तरह जिवें असीं गाण लगे हां इस तरह सुना दित्ती है। गल बड़ी मौके दी है, धन धन हमारे भाग घर आया फिर मेरा। सत श्री अकाल, सारे जन रसना पवित्र करदे हो तो कहो जी, धन धन हमारे भाग घर आया फिर मेरा, सोहे बंक दुहार सगला मन हरा। इस नूं बिलावल राग अंदर ही जिवें मेरे पिता दी बंदिश है ओ सरवण करो जी। धन

મચ્છી પાણી તો વિછડી નહીં તે જીવન મુક્ત. ગુરુ કા શિખ જિસ વેલે ગુરુ ને હુકમ વિચ રહેતા હૈ તો બખ્શિશ ઇ બખ્શે છે. જિસે મનમત આ જતા હૈ તેરે લગી આન હોતે હૈ આપણે પાણી જો ચલે પાઈ સો વિછડે જો. મચ્છી કી જાણે સાગર કે દમ, પંછી કી જાણે આકાશ કે દા વડા પાઈ સજાસ, કી જાણે ગુરુ કે દા વડા હૈ. મહેમાન જાણે તેરે વડે વડા પાક તેરા ભાઈ સજ્જા ચલા જા ગુરુ કોણ જે વિચાર બનાયા હૈ તો એક ચિઠ્ઠી ભી મેરી લઈ જાય જાકે ગુરુ નું દેખે અરદાસ કરી કદે મેં પાપી તે બખ્શિશ કરે ગુરુ મેનું ભી દર્શન દીધા. ભાઈ સજ્જે ને કહ્યા ઠીક હૈ ગુરુ શાહ, અગે ગુરુ ની ચિઠ્ઠી તેરે કોલ લ્યાયા હા તે તો 9 મહિને ધક દીતા હૈ તેજે તેરી પત્રકા લે કે ગુરુ કોલ ચલા ગયા. ગુરુ 18 મહિને ધક દેવેગા ઉન્હોંને કી કર, મેં નહીં કર ચંગા ભી તેરી પર. ખ્યાલ હૈ ચલો મન્ના આપણી પિંડ ચલતી શહેર કોઈ બચી ગયા હોય તો ભાઈ સજ્જા આપણે પિંડ પડતે આયા કી વેખ્યા જિથે કખણ ની કુલી સી ઉથે આલીશાન મકાન બન્યા બિર બિર પ્યા તક જે સુદામે ને તક્યા. સુદામે ઉતે ભી એ સમાયા ભગવાન કૃષ્ણ તે સુદામે દોવે સુધી પર કોણ કોણ દે વિદ્યા પણ એક દિવસ સમીપર લખી કારવાળી ને કહ્યા બચ્યો જી માં જી ઘર ભી લકડા કોઈ નહીં લકડા લ્યા જંગલ દોવે તુર પે. સમીપર લખી ની કારવાળી ને સોચ્યા બચ્ચે હમ જલ્દી નહીં જા રહે હમ ભૂખ લગેગી. સુદામે ગલ સુણ કોણ લે થોડે જે છોલે રંગ ચણે રંગ પોટલી વિચ બંધ દીતે જિસને ડાંડી ભૂખ લગે એ ખા કે તે પાણી કા ઘુટ પી લે. લકડા કટગીયા પંડા બનિયા સિર તે ચુકણ લગે ગરમ કાળ ની રેત મારી દાદી મારી રાત પે. ભગવાન કૃષ્ણ ને કે સામે હું કિદા કરીએ ઘર તો પહોંચ નહીં સકદ જંગલ કા મોકા હૈ. સુદામે ને કહ્યા મહારાજ કોઈ આ દરખત હૈ બડા વડા એને ઉપર ચડ ચલને રાત ઇસલી બિતાઉને દિન હોવેગા ફિર તક એક દાણ દે ઉપર ભગવાન કૃષ્ણ જી બહે ગયા. દૂજે ઉત્તે સુદામે ભૂખ લગી સુદામે ને ઓ છોલે વાળી પોટલી કઢી. સુદામા સોચણ લગા મને જિસ તરહ મેનું ભૂખ લગી હૈ કૃષ્ણ નું ભી લગી હોણી તે છોલે છોડે કૃષ્ણ નું તો પતા નહીં તો ક્યો ના આપ ભી છક લઈએ. ભૂખ બડી જાલમ થી તો સુદામે ને કી કીતા છોલિયા વાળી પોટલી ખોલી તે એક ફટકા મારે ત્યારે સાસ સંગત જિસ વેલે છોલે દંદા તલે આયે તે સુદામે ને જિથે આવાજ આવી રાત દા સમા જંગલ દા મૌકા ટિકવી રાત તો દૂજી ડાન ઉતે બેઠે ભગવાન કૃષ્ણ ને કહ્યા સુદામિયા કુછ ખાંદા પે. સુદામે ને છેતી છેતી માર્યા ਇੱਥੇ ਭਲਾ ਕੀ ਖਾਣਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਆਖਾ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ. ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਦਾਮੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰਾ ਬੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਰਵਾਦਾਈ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੁਨਾਮਿਆਂ
खा रहे हैं। महाराज तो किदा पता है इतने पता कि मेरी मां बैठी है मैनू कुछ देने वास्ते, एवं गरीबा ना विरास ना कर। भगवान जी विजुक कर कोई समय में बात प्यारी साल संगत से सुनाने में तीजा फटका मारे। फिर आवाज आई, भगवान जी कह लगे स्वामी भावे मन से चाहे ना मन पर कुछ खा जरूर है। महाराज तुम कि पता है, भगवान जी कह लगे सानू आवाज पी आई है दंदा की। तो स्वामी ने कहा महाराज तुम्हें बड़े खोए, तुम पता नहीं मेरा शरीर जरा दुबला है, ते बारिश हुई है ते शरीर भुखन लग गई है, ते मेरा तो दंद से दंद पिया बजता है, तो तुम्हें कहने बुरी कमरे हैं। तो उस वेले भगवान पिछले ने बचन कर दिता, जाओ दलिद्रिया दलिद्र कहते हैं कंगले नीवी शरीर, जाओ दलिद्रिया। तो पवित्र प्रोग किया है क्योंकि वन के खाना बंदगी, दिखा के खाना शर्मिंदगी, खो के खाना गंदगी। जो खो के मैं खाता है वह गंदगी खाता। भगवान ने वो वचन किया पूरा हो। संदीपा जी की को पढ़ के विदेह भगवान कृष्ण जी तो द्वारका नगरी ने मार्ग जा बने, तो सुदामे ने कर सारी दुनिया का दलिद्र है। कारोबारी सुशीला निके निके बच्चे खाने कुछ नहीं मिलता। एक दिन सुशीला ने किया स्वामी मैं सुनिया है कि भगवान कृष्ण तुहाडे मित्र। स्वामी ने किया साहब पाने भगवान को क्यों नहीं जाते, आप भुखे पर मरते। जे भगवान कृष्ण वर्गा तुहाडा मित्र है, नाले वो अवतार भी है, नाले राजा महाराजा भी है, उन्हें को क्यों नहीं जाते। कुछ मिल जाएगा इस दिन चंगे मतीत हो जाए। स्वामी ने कहा प्राजा वाली गल तो तेरी ठीक है, पर मित्र को मुझे शर्म यात्री है, शर्मता भी वो अवतार भी जरूर जाओ। तो भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते हैं मित्र सुदामा दाल भी, मित्र केंद्र पंडित सुदामा ब्राह्मण दाल भी बाल सिखाई मित्र सदाए लागू हुई बावड़ी। करवारी सुशीला जड़ी थी उन्हें मजबूर कर दिया। स्त्री का हक भी बड़ा जबरदस्त हो, स्त्री अखेल है वो भी बड़ा पर्व लागू हुए बावड़ी। मिल जगदीश दलित्र गवाए चलता गिरदा गिटियां कीकड़ जाइए कौन पिलाए। एक ठीक है बचपन इकट्ठे खेलते रहे खाते पीते रहे, पर वो राजा बन गया, मैं तो गरीब आदमी किस तरह उन्हें कोल मुलाकात होगी, किस तरह उन्हें कोल पहुंचे। भाई साहब जी लिखते चलता गिरदा गिटियां कीकड़ जाइए कौन पिलाए, उनका नगर द्वार का ते सिंह द्वार खुलता है। कई दिन बाद सिंह धर्मांत भी के जिसने द्वारका पहुंचे भगवान कृष्ण के महला को अंदर जान लगा दरबार में रो क्या वे किधर जाना है जी मैं भगवान को मिल चल पीछे हट। बेचारा सुना मैं डरता आया पीछे हट कोई गल नहीं, मैं अगे ही पता थी गरीबा भगवान होते थे एवं कारवाली ने जिद की थी आना ही नहीं। पर सुदामा रो मना इतनी दूरों आए निराश ही चले जाइए। नरवान ने तकिया रोंदा क्यों है, सुदामे ने किया बड़ी दूरों आया आस तार के मित्र नु मिलू आ केड़ा मित्र, भगवान कृष्ण मेरा मित्र। राहो भगवान कृष्ण के मित्र अपनी शक्ल वर्ता रहे, इतने राजे महाराजे आके खड़ोते कोई पूछता नहीं तू किधरों का मित्र। सुदामा रो के कह लगा है दरबार मैं सच की दरबार के बीज ला के थके मत्थे से तिलक लगा होया कि ब्रह्म जा इतनी खैर पहला मैं जाके बेनती कर रहा सुदामा बाहर खड़ोगे
ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਰੁਕਮਣੀ ਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਜੀ ਚਰਨ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਐ ਦਰਬਾਰ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ? ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਖੜੋਤਾ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹੀ ਉਜਿਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ

0: कर पहला गेट पर रखा, चार परिक्रमा करके सुनामे उसे छाते कर सारा गेरू मित्र पाई कर दे मित्र कि स्वाद पूरा है तो मित्र हम तेरे स्वाद पूरा नहीं तो वही मित्र मुखाकृत भी कर लेंगे निंदा भी कर लेंगे जित दिन स्वाद ना उपजे तित दिन बोलन गम सुनामे दिए परिक्रमा करके छाती ना लेके आए ते जिस आसन से आ देखे सब सुनामे ने बिठा सुखनी से राज कर दिया जाओ मेरा मित्र आया है जल ले आओ सुनामे ने चल तो रुकनी से राज का पानी कैसे ले सर भगवान कृष्ण सुनामे ने मिठे मिठे बदल कर सुनामे कितना चिर पिछे कुमार जिसे तेरी हालत की होगी है तेरी दिशा की बन गई है ऐसे बिहार बिहार मुखियों एक कंटक जाल पड़े पद को तेरे पैर झंडे चुके जिसकी कोई भी थी पर सुनामा नहीं बोले.
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

दूसरा शब्द शरण गुरु जी रत्नारत्न पदार्थ और सागर पर्याय वाणी गुरबाणी लागे तिन हस्ते।

कोई रोज रोज नहीं मिल सकता। जो सेवा मिल गई है तो कर ही तदे तो मार्ग मक्ष गंगा राम रात दिन भांडे मांझी जाने ते गुरु के दर्शन की उड़ीक रात दिन उड़ीक कर जाए गादो भागा वाला दिन चले धन गुरु अमरदास पातशाह जी दर्शन गुरु बख्शिश कर जिस तरह बख्शिश हो गंगा राम की सेवा थाए करांगा शामां नूं क्योंकि घड़ी ने इशारा किया समा सुख की घड़ी का पता ही नहीं आखो सही दुख की एक घड़ी आ जाए तो की नहीं आ जाए पता ही नहीं लगता किस तरह समा यही है मालिक धन गुरु अमरदास पातशाह जी काम करने आप सारी मार्ग ने मेहनत तो आप जो सेवा मिल जाए गुरु घर की करो इस उड़ीक आप शामा तक इंतजार करिए गंगा राम दे सदके सानू भी दीदार का किरका मिल जाए फिर साडा कीर्तन कीता सुनिया पर गुरु घर किसे दी कामना जाया नहीं जिसने भी तन मन धन नाल जिसने भी सेवा की थी है हजूर फरमाउंदे जान के सिमरन सब कुछ पाइए बिरथी उसी भी कालना कर अपनी कालना भी गंगा राम की कालना किस तरह गुरु ने अमृत वेले साढ़े ताई साढ़े जीवन का कीर्तन आशा जी अमृत वेला सच नाम वड़े आई जिदा नाम ही अमृत वेला है उसकी उस्तुति कर शामना समय अनुसार आओ कल पूर्णमासी क्योंकि पूर्णमासी का नाम लीए तो धन गुरु नानक पातशाह खां के सामने पूर्णमासी गुरु ने माण बस पूर्णमासी ऐसी पूर्णमासी आई रब प्रगट हो गया खुश रही ताइयो बाबा ने सिंह जी उत्थे 24 घंटिया का सत्संग है नानक डेली कोई आए चाहे पूर्णमासी का समागम खास होता दास इंडिया हो बाबा जी की बख्शिश द्वारा नानक सर हाजरी भरता ऐसी साई की प्रेरणा अनुसार पूर्णमासी थोड़े को जुड़े हुए हो थोड़े दर्शन करके मैं भी उस पवित्र पावन याद हिरदे च वसावगा सुरत नानक साहब पहुंचा के दर्शन कर पूर्णमासी आप आओ गंगा राम जी साखी सुन के अपना जीवन सफला करो आप जिस गुरु ने सानू ये दात बख्शी ओदा शुकराना अदा करिए यही अरदास करिए पले अमरदास तेरी तेरी रहमत है मेरे पातशाह नहीं तो असि कलयुगी जी थां थां ते कलयुग रुकावटा पिया पा माया कई रूप धार के पिछड़ी किसे है अजे आ गए तो मार्ग दे दारू प्राप्त करके गुरु नु पा गए खुश गुरु नु पा गया जीवन सारी मिलके करिए उस तो धन गुरु नानक पातशाह आप जी ने करम करम सारी गुरसिख माई पाई धन गुरु राम दा अमरदास पातशाह जी आप जी का आगमन गुरपुरब मना
ਬਖਸ਼ਿਆ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਂਡ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੰਤਰ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गौड़ी चेती महला पहला दा इस शब्द जो आप जी ने श्रवण किया है, इस शब्द के द्वारा साड़ी जिंदगी दा जो एक सफर है अते ओ सफर दी मंजिल नूं असीं जो खो चुके हां, उस दी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट दे के सानू वापस जगा रहे हैं। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच बयान करते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। वो जीवन नू एक यात्रा आखते हैं, अते आखते हैं कि ए सफल हो गई है। इमेजिन करो कि वो किस किस्म की थ्रिल होएगी, किस किस्म का वो प्लेजर होएगा, किस किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच एक चेतना ए अपने जीवन च खुद आख सके, उसनू जी सके, उसनू इम्बाइब कर सके कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी ऑफ अस कैन क्लेम दिस कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है? हाउ मैनी? इनफैक्ट सानू तो यह भी नहीं पता कि जीवन की कोई यात्रा भी है। सफल होना तो बहुत दूर की गल। सानू यह भी नहीं पता कि असी अपने जीवन की यात्रा च जा किधर नू रहे हैं, मंजिल वल नू या मंजिल तो दूर। बाबा जी ने अपनी बाणी दे विच एक पंक्ति उच्चारण की है जिथे वो आखते हैं असी मंजिल दे करीब तकी जाना, असी मंजिल तो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा दूर चले गए हैं। पंक्ति सुन वाली है, कहते हैं साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे, तावत ताए तावे प्रीत माया, लख कोसन को विथ दीजे। कहिंदे यात्रा सफल ते की करनी, यात्रा सफल उदों हुंदी है जदों यात्रा दी जो डेस्टिनेशन है उत्थे पहुंच जाया जाए, उदों जो यात्रा कंप्लीट हो जाती है, सफल हो जाती है। पर जे यात्रा नालों उसकी मंजिल नालों उसके डेस्टिनेशन नालों जो पाड़ है, गैप है, डिस्टेंस है, दूरी है, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, इसका अर्थ यह होया कि यात्रु नूं यह नहीं पता कि वह जा किधर नूं रहा है। बाबा जी ने बाणी दे विच एक जगह आख्या है साढ़े मतलब कि तुहाडी हालत यह है कि तुहानूं यह पता नहीं तुसीं किधरों आ रहे हो और किधर नू जा रहे हो। बस ये आख रहे हो आई एम वेरी बिजी, आई डू नॉट हैव टाइम। कोई पूछे तो कर की रहे हो, दैट आई डोंट नो। जा किधर रहे हो, दैट आई डोंट नो, बट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। किधर जा रहे हो इसका पता नहीं, किधरों आ रहे हो इसका कोई पता नहीं,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

अमृत हर काना अमृत वाणी अमयो रस अमृत हर काना मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ उपदेश सुनो गुरबाणी गावो पाए उपदेश सुनो तुम गुर सिखो।

सफल हो मन में लायो पाओ सुख सहज आनंद गाना गुरबाणी गावो पाई सुख सहज आनंद गाना तब जपते दुख जाए नानक नाम जपत सुख लुके।

मैं ना ही प्रभु सब कुछ तेरा. आई एम नथिंग ओ गॉड, एवरीथिंग इज योर्स. ईग है निर्गुण उग है सरगुण, केल करत विच स्वामी मेरा. इन दिस वर्ल्ड यू आर द एब्सोल्यूट फॉर्मलेस लॉर्ड. इन द वर्ल्ड हियर आफ्टर यू आर द रिलेटेड लॉर्ड ऑफ फॉर्म. यू प्ले इट बोथ वेज. नगर में आप बाहर पुन आपन, प्रभ मेरे को सगल बसेरा. यू एग्जिस्ट विद इन द सिटी एंड बियॉन्ड इट एज वेल. ओ माय गॉड, यू आर एवरीवेयर. आपे ही राजन आपे ही राया, कह कह ठाकुर कह कह चेरा. यू योरसेल्फ आर द किंग एंड यू योरसेल्फ आर द सब्जेक्ट. In one place you are the Lord and Master, and in another place you are the disciple. Kako durao kasyo balbancha, jeh jeh pekho teh teh neera. From whom should I hide? Whom should I try to deceive? Wherever I look, I see you near at hand. Sad murat gur petyo nanak, मिल सागर बूंद नहीं अनहीरा. ओ नानक, आई हैव मेट विद गुरु द एम्बॉडीमेंट ऑफ होली सेंट्स. लाइक द ड्रॉप ऑफ वॉटर मर्जेस इन टू द ओशन, इट कैनॉट बी डिस्टिंग्विश्ड एज सेपरेट अगेन. मैं नाही प्रभु सब कुछ तेरा. द शब्द इज कंपोज्ड इन राग एमली बिलावल. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ राग यमन एंड राग बिलावल. And the taal is Panjtaal di Swari, 15 beats.

बादशाह कहन वाले कह छड़ देने। भाई गुरु गोबिंद सिंह जी ने अवतारा दे बड़ा खंडन कर दिते, उन्हां दे दिल विच कोई भेद सी, फर्क सी। बादशाह कहन लगे, नहीं मेरा किसे नाल वैर नहीं, मैनू जिवें वाहगुरु ने गल्लां आखियां ओ मैं संसार नूं दस रहा। दूजी गल, ओना तो विछोड़ के जे मैं आखा मेरे पैरां दी पूजा करो तां ते मैं भुल विच हां। मैं कहंदा भाई नहीं, ओ भी दस रहे ने, मैं भी दस रहा, उस वाहगुरु दे तुसी भी सेवक बनो, इसलिए मेरा किसे नाल वैर नहीं। हजूर कहंदे ने